Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: तुम्हें कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख
1: ऐसे ना तू देख परे क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट।

Elembu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: मिलाछ कि ब्रो?
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो?
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए,
0: राम्रोसँग ल गाइदिए,
1: साथै
0: मुच्छे

0: आदरणीय श्रोता, प्रस्तुत सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रम जीवनको वचनको अब हामी अन्तमा आइपुगेका छौं। हामीलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। श्रोता, अब कार्यक्रमलाई बीट मार्ने बेला भएको छ। साथै कार्यक्रम सुनेर तपाईँहरूलाई बाइबल अध्ययन गर्न मन लागेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, हामी तपाईँहरूलाई बाइबल उपलब्ध गराउनेछौ। हवस् त श्रोता, आजका लागि म प्रस्तुता कुमराज पनि भोलि फेरि उपस्थित हुने वाचकका साथ विदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
1: Elambu FM 89.6 MHz.
2: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो।
3: सदन देन नचंग प्रार्थना। जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अंक 70 रंगित स्वागत मुला ना वियोग तामाङ तिनिङा रंगदे देन तिगै महत्वपूर्ण तामगदे जुबरे निवान मुला जोसे रंगला प्रार्थना लुइदा लानन शक्ति गदे देन प्रभावकारी सोला फिलिपित सारा धेला छ एनी गदे से तिगै ताम्रे सुर्ता थलाउ तर जम्मन ताम्ला लागिर प्रार्थना लवन धन्यवाद मिन्जी परमेश्वर देन छ्याम बिन्ती लौ चुपदरी निवेदन शब्द द ध्यान पिन्छुगो निवेदन दिवा याकर की विशिष्ट अनुरोध हिन्बा रंगसे प्रार्थना लामा जति नचंग अथवा विशिष्ट प्रार्थना लुई ओतिन हुन् प्रभावकारिताला थेन्दी जब रंग विशिष्ट मुसुला रंगसे चु एन था यंगसुला कि परमेश्वर से थे प्रार्थना ला जवाफ हाइमा पिन्छुबा मुला परमेश्वर से लामा रंग दा चुला लागरी परमेश्वर दा महिमा पिन्छु मुला एफिसी 4 अध्यायमा छ थेट भाषामा दहेन जे यंग जम्मानन परमेश्वर आवा गिक नोन हिन्ना थेनन जम्मा देन छाम तसी यंग जम्मा ग्याम गे लवा मुला वछे थेसन जम्मन पोरी शासन लवा मुला बिन्ती शब्द दोषी उल्लेख लवा मुला जेखेन परमेश्वर श्री रंगला आर्थिक खाचोका दिम छोन लसुगो बिसी प्रार्थना थलसुगो थे विशिष्ट आइनबा बरु परमेश्वर श्री रंगला जागिर माइवाला लागिरी माग ठङबाला लागिर प्रार्थना लसुगो थे भन्दा एन विशिष्ट जागिर नछाङ जागिर हानाङ माइवा विवा बारेर बुद्धि पिनबाला लागिर परमेश्वर द प्रार्थना लसुगो यदि रङसे लानन जागिरला लागिरी आवेदन फर्म भर्तिसी विषम परमेश्वर जे रङ गे लाभ्री सेमुला ग्लारी गेरी थान्सुबा लागिर सही माप ठङबाला लागिर प्रार्थना लसुगो याकुब 4:10 एनिगदी प्रब्लम नत्स सोजी मी दोगो ओछे थेसेन एनिगद द ग्रेन मी सोला परमेश्वर क्याम प्रार्थनाला जवाब हाउरी नम्रता आवश्यक मुला लालन क्रिश्चियन गदेसे रंगला रुइला लागरी तिगा जब नङमुला बिसी रंगनो निर्णय लामुला थेलिचा थेनिगदे प्रार्थना लामुला थेने परमेश्वर देन परामर्श आलामुला लव निर्णय रि आशिष पिनबाट लागरी प्रार्थना आ लमुला थे घमण्डी देन अहंकारी आजबा हिन्बा गर्वला उदाहरण छु हिन्बा कि यदि रंग रंगसे निर्णय लस्युजी कि रंगसे रंगला जहान्दा रो लाबरी अर्को युल्दी गे लदोला तेलिचा रंग प्रार्थना लस्युला परमेश्वर त हस्तक्षेप लाबरी देन बिसा याङ्ग्रो रो लाबरी आग्रह लस्युला तसै यदि परमेश्वर जे रंग थे युल्री निबरी सेम आलासुमुला विषम तिगा तला रंगला लुई योजना ला बो अताबा ताम गदे लाबरी परमेश्वर द हाइमाई नियोगो परमेश्वरला बुद्धि से रंगला आवश्यक गरे छोन लाबरी रंगला गे करेदा मार्गदर्शन लाबरी पिन्छुगो लानन बुद्धि रि भर अतसुगो तिग दवसेम रंगला बुद्धि परमेश्वरला बुद्धि देन रोसे रंगला लागिरी शोभा योजना भन्दा लानन फरक तबरी हामला फिलिपी 4:19 ख्रिस्ट येशु ग्याम नला परमेश्वर से रंगला शक्ति ग्याम तांगसी तांगसी एने गदे दा दोब जम्मन से गदे थेला सम्पत्ति ग्याम पिन्ना प्रार्थना लामा सही तरिका बिबर रंगला आवश्यकता तिगा हिन्बा बिसी निर्धारण लबा हिन्ना रङला आवश्यकता अर्को युल निबरे आइन्बा रङला आवश्यकता रङला आर्थिक आवश्यकता कदे छोन लब आइन्बा थे आवश्यकता छोन लबरी रङसे तिगा कदम चलप लदोला दिबा बारेरी लानन मैसुगो परमेश्वर चु बेनन संसार सृष्टिकर्ता मसुला परमेश्वर देन बेनन थोप गदे मुला परमेश्वर द रङला आवश्यकता गदे खाँचो गदे छोन लबला लागेरी रङसे अर्को युलरी निबरे आवश्यक अरे परमेश्वर दा रङसे लादोबा याकरकी जेखेन ताम बिबा रो फेरी भरोसा लाबा हिन्बा परमेश्वरला योजना मैबा देन रोला योजना पालन लाबा हिन्बा एक थेसलोनिकी 5:17 ओछे सदन प्रार्थना लौ हाजीबै परिस्थितिला बारिदी परमेश्वरले इच्छा तिगा मुला बिसी था याङमा थे प्रार्थनाला जवाब आ दे दोना प्रार्थना लसुगो दत्ते बेबा थलसुगो जब याङ याङला प्रार्थना कदेरी दृढ चिला परमेश्वरसी पक्कन नन थी प्रार्थना कदेला जवाब पिन्छुला आमेन परमेश्वरसी रङनीला जीवन रे प्रशस्त मात्र आशिष पिन्छु गई
2: रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 धन्यवाद हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार
1: टाइम चेक इट्स 7 PM
4: अहिले साँझको 7 बजेको छ।